भाई सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

और तुम कितनी सुंदर हो। फिल्म मोहरा का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। Wilt u ons bellen, dan altijd tijdens kantooruren op het nummer 020 409 0807.

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाफ में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादादाग 29 en zondag 30 augustus GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

की सजना है मुझे सजना के लिए। आज है 13 जुलाई, het is mooi weer en de komende dagen wordt het alleen maar warmer.

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम हम कॉफी चाय अब धीरे धीरे समाप्त करने को जा रहे हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले हम ये भजन आपको सुनाने को जा रहे हैं और इसी भजन के साथ हम ये प्रोग्राम को आज अब समाप्त करने वाले हैं। चंद्रू आत्मा के आवाज में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा गाना सुनने में बहुत सुकून मिलेगा। मोई से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि चांद्रू आत्मा कौन सी गाव है। ये गाव है या कि हाथ की रेखा कर्म से बदले, जिस तोर हाथ में जो रेखा लिखा रहेगा तोर कर्म से भी बदल सकेगा। मोई से सुनिए, मोई से रहिए। यहाँ तक आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम कॉफी चाय में दक्षो पेश किया गया है। बदाम फोर लाइसर एंड मॉर्गन इज वेर न्यू आउटसेंडिंग। Ik wens je een mooie start van de nieuwe week. Zorg goed voor jezelf. Blijf goed drinken met deze warme dagen. En vergeet niet dat een vriendelijke woord iemands hele dag kan veranderen. Ha? Pyar se baat kariye. Aur mooi se rahiye.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

इतना करो ना मुझसे प्यार, ओ साथिया ये तूने क्या किया। एस चित्रा एंड एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मोहम्मद अजीज एंड साधना सरगम हिस्सा लेंगे। आपके आ जाने से हाँ

और सच मानिए कि दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। फिल्म खुद गर्ज का गीत आप सुने मोहम्मद अजीज एंड साधना सरगम से। ये उजाला रेडियो है।

अब तू हाँ कर या ना कर, अब तो तू है मेरी किरण। फिल्म धड़का गीत उदित नारायण की आवाज।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

हिलक फील गुड गाना, हिलक हंगामा गाना। मैं हूँ बस यहाँ, मैं हूँ और मेरे जैसा कोई है कहाँ। एड फिल्म मुन्ना माइकल वास इट द स्टेम फ्रॉम सिद्धार्थ महादेवन ऑन द फोकस। उजाला रेडियो है, सुनो वालों, दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो। आई होप दैट यू गनीत फ्रॉम द मूवी मोमेंट एंड फ्रॉम द हिलक गाना दी वी हियर सो सेलेक्टेड हैव ऑन आवर प्लेलिस्ट।

कि जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए. या इस अफकोमजग है फिल्म फाइटर में ओनर ऑन दीपिका पादुकोण एंड ऋतिक रोशन इन द हाउसरोल. Heerlijke Ghana, heerlijke feel-good Ghana. Ghana om lekker om mee te bewegen. Ja, dankzij de muziek genieten de hartstochten van zichzelf.

पाकिस्तान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

एक ऐसी आवाज जो हर शख्स की पर्सनालिटी में डल जाती थी, वो थी रफी साहब की आवाज। उनकी आवाज में गाई हुई गैर फिल्मी गजलों ने क्या गजब ढाया था।

0: उजाला रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो। उजाला रेडियो आपके साथ।
1: चलती है क्या नौ से बारह
2: You are life. Ujala life.

0: तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 एंड जोंदा 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में। Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

ये है उजाला रेडियो। मैं हूँ लॉयड महावीर। एन हेले गुए मिदा अलमाओ। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय।

0: कैसे स्कोर हुआ बा? कोई पठाई से
1: ऐसा खरी धराधर स्लीपर हुआ के बारे में खरी बात से
0: दुष्याय मेटन स्लीपर ऑफ दुष्याय
1: ik weet niet met welk onderzoek je ben gestart, maar er komt alleen maar WhatsApp berichten hier op 020.
0: Ik parom lok promoveren we toch?
1: Ik pa tu pro.
0: Zo'n hamen lok doen hè.
1: Hamen na bood has wij, want hamen tani u hè ja. खासी ना खासी बोल
0: बड़ा बड़ा खराब तौर है चा खोखिया
1: हाँ सुन
0: मैं कॉफी ऑफी ना पिए
1: छा कॉफिया अब तो हम देखिए बिना लेगा कॉफिया का
0: कॉफी ना चाय ना कुछ यार यहाँ पे
1: आज पानी हमें
0: जाने कौन सी मिले कोका कोला सही सही
1: ऐमा कोका कोला मैं सुन ना हमें को बहन रहा एंड सो लेव नहीं मेर मार हम अपन बहन के जानी जब से मुके जानी ला वो सन्नाम में रहता रहा उस सबेरे शुरू करता है मैं कोका कोला और एंडिंग करता है भी अपन दिन में कोका कोला इस तो एरग दैट इज मेट कोका कोला स्टार्ट इन सुरीनाम
0: हां मैं ढेर आदमी है लॉयड ओके इन माय फैमिली हम जानिला
1: हां
0: एक बोतल एक लीटर रहा था सनाम में
1: कोका कोला है सीरियस
0: एंड दैट मेक्ड अस दन अप इन अ पार उर टाइट है
1: हां
0: दैट वाज लेकर गमुआ में
1: मोय लगे ना
0: ठंडा ठंडा कोका कोला बड़ा मोई लगता रहा पिए के
1: विशाल
0: तो उस सब एक जैसे आदमी यहाँ पे चाय पिएगा और कॉफी पिएगा सॉरी काम पे सो ड्रंक वेई इन सुरीनाम कोका कोला
1: ओके एक विल एवे
0: प्रसिद्ध द सेल्फ द इडे योर लॉयड
1: एक विल योर हम तो बटिया ना माला काटे मर
0: काट दे अब काट दे बोले ना मांगिला काटे भैया हम तो बटिया ना काटे मांगिला मार
1: हम काट दे ला तो आसिया दी स्क्राइब्ड इक ड्राग आल्टाइड वार दन ओक अन बस स्लीपर ओक ऑन वकेंसी हेलमा एंस मेंट आन दिस ना कोनो तो बटिया सुन है या
0: है अकेले हम ना बाती दुनिया में देख ले तो
1: ओके आसिया ओक एन हेल गुडमिडाग एंड ऑन हैव हियर Icon भैया ओ भैया सुनील छेदी goedemiddag meneer छेदी voor het eerst dat u een bericht stuurt absoluut met slippers zegt hij overal ook in vijf sterren hotel भैया
0: देख ले तो लॉयड ये ही मैं अफवेकम नहीं एक
1: का करिए कोनो को चाहे तो अफवेकम रहेंगे
0: तू कौन मोर्सू बात है तू कौन मोर्सू बात है ओके बोलो जाएगा मोर्सू आदमी
1: अच्छा सुन एक टाइगर जिंदा है कोनो हैगा कोनो के नाम है टाइगर जिंदा है थाई सोंडर स्लिपर्स हाउस इज टॉक स्कोन ओके ना स्कोर एक वेर
0: इलॉयड खत्म भी बाको लो ठीक है
1: कारिन पठाई
0: टाइगर
1: कारिन पठाई जाएगा कैंपिंग के स्वयं बात आई कौन सी हैगा
0: फोटो पठाई सोगे
1: हाँ फोटो पठाई सेगा एंड दैट हैपी
0: नहीं नहीं नहीं कारिन विल दैट सॉर्ट फोटोस नीड सीन और बिकिनी की वाली फोटो
1: ना बिकिनी ना है यार
0: तू तो बोले पठाई से यार स्वयं बात वाली
1: कैंपिंग के स्वयं बात पठाई ओके रिया कलू सेग इक डू सोंडर स्लिपर्स थाइस वेल Op vakantie voor hygiëne draag ik slippers. Groeten, Ria.
0: Sang, dus dat ding is wel door kan die tora jada bacha.
1: Hamar kan die jada hai ga, maar hamme jana hai ga, dat jij toch meer scoort hoor. Ik had gewoon een paar dingen teruggehaald in. Goedemiddag aan het Lloyd. Ik douche thuis zonder slipper, maar als ik naar het buitenland ga, dan met slipper. Mijn man klopt ook altijd zijn kant van het bed.
0: Zie je?
1: De kle?
0: Er mag ook geen stof.
1: Maar kon ik dat Mieke Moerie met Annie Kutsch?
0: Ja. Nee, helemaal niet. Wij zijn netjes opgevoed door onze ouders. Maar mij hebben netjes op. Ik heb een partij, mevrouw. Ke partij zijn laatste bericht hoor?
1: Angela.
0: Angela, ke admit John Ba, die is netjes opgevoed door zijn moeder. Ook er mij ook eens gehaald zijn beta, zoete ze pijlen. सब गर्दा अर्दा जोन बात झाड़ दिए तब मोल से सूखी है इसलिए एक मैन ओक सो अपगेफूट लॉयड
1: ओक अल्स इक नार बाउटलैंड गात मूट इक फान माय मान ओक कुशन स्लोपन एंड लाकन्स मेनेमेन हेट ईर्स्ट व्हाट माय मान डूट अल्स हाई इन होटल कम्स द डूश स्कोन माकन अरे बाप रे गात अल्स ईर्स्ट स्कोन माक मिडल कोपन आई बी गडो सीरियस
0: ओके दिस इज द गुड अपगेफूट
1: या द स्टोर कान काट देगा
0: Nou, ik er opvoeding bouwt jabber.
1: Okay, meneer Harry is ook voor het eerst die een bericht heeft gestuurd naar Ujala op 020-363-0808. Meneer Harry, je weet zo'n programma, hoe wil ik je hem douchen zonder slipper? Ik vind het raar dat mensen met slippers hier douchen. Dus toe raar, Martin Anen. Jij bent raar.
0: Ik ben afwijkend. Maar oké, ik ben aan het doen.
1: Oké, goedemiddag heren. Ja, zonder slipper thuis. Anen heeft gelijk. Met vakantie altijd met slippers. Groetjes, Sunita.
0: Het is wel redelijk 50-50 nog, Eloy.
1: Ik admin.
0: Als je 60% ook hebt.
1: Ompi, per kaas, ompi, bolika

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम हम कॉफी चाय अब धीरे धीरे समाप्त करने को जा रहे हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले हम ये भजन आपको सुनाने को जा रहे हैं और इसी भजन के साथ हम ये प्रोग्राम को आज अब समाप्त करने वाले हैं। चंद्रू आत्मा के आवाज में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा गाना सुनने में बहुत सुकून मिलेगा। मोई से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि चांद्रू आत्मा कौन सी गाव है। ये गाव है या कि हाथ की रेखा कर्म से बदले, जिस तोर हाथ में जो रेखा लिखा रहेगा तोर कर्म से भी बदल सकेगा। मोई से सुनिए, मोई से रहिए। यहाँ तक आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम कॉफी चाय में दक्षो पेश किया गया है। बदाम फॉर लाइसरे एंड मॉर्गन इज वेर न्यू आउटसेंडिंग। Ik wens je een mooie start van de nieuwe week. Zorg goed voor jezelf. Blijf goed drinken bij deze warme dagen. En vergeet niet dat een vriendelijke woord iemands hele dag kan veranderen. Ha? Pyar se baat kariye. Aur mooi se rahiye.

प्रातः और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

फिल्म छाया, हाँ फिल्म छाया से गीत को आप सुने तलत महमूद एंड लता जी से, और ये उजाला रेडियो है। एक बार फिर लता जी हिस्सा ले रही है।

तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों लगता है मुझको डर। लता जी की आवाज और फिल्म असली नकली का गीत आप सुने।

बहरो थाम लो अब दिल, मुकेश जी के साथ लता जी से गीत को आप सुने और फिल्म का नाम नमस्ते जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम, अब हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी।

शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा, इसलिए आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ और फिल्म राम और श्याम से आप सुने आज का उजाला रेडियो का प्रोग्राम में।

0: हर एक सुनने वालों को उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम आगाज करते हैं। आप सभी सुनने वालों को अदाबर्स और नमस्कार। मैं हूँ आपका हम सफर निशा। आज मैं एक के बाद एक हल्के स्वरों में नगमे चुने हैं। आप इत्मीनान से सुकून के साथ प्रोग्राम से लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए। ये प्रोग्राम आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। शुरू करती हूँ भजन से, तर्स है राम राम तो सबका रखवाला, जब जब भी ये मन घबराया तूने आन संभाला।
1: राम

तू सब का रखवाला। भजन आपने अभी मोहम्मद रफी साहब से सुना। खूबसूरत जिंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती है, बल्कि उसकी तामीर रोजाना की दुआओं पर होती है। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से।

सुनते हैं कि मिल जाते हैं हर चीज दुआ से। प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था भक्ति और मजहबी संगीत। अब हम गजल शौकीन वालों के लिए कुछ गजलें सुनवाएंगे। मोहब्बत मोहब्बत करो तो इतनी शिद्दत से करो कि अगर वो छोड़ भी जाए तो किसी और का ना हो पाए।

किया है प्यार करेंगे, शहनशाह गजल नवाज उस्ताद मेहदी हसन से पेश थी ये गजल। कश्ती भी नहीं बदली, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौके सफर ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए।

जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। दिल छू लेने वाले गजल पेश थी नयारा नूर की मीठी आवाज में। कुछ नहीं मिलता जितनी मर्जी वफा कर लो किसी से, जब वक्त वफा ना करे तो वफादार भी बेवफा हो जाते हैं। तेरी बेवफाई का शुक्रिया, मुझे तूने जीना सिखा दिया।

बेवफाई का शुक्रिया। चंदन दास से पेश थी ये गजल, कलाम था सबा अफगानी का। अगली गजल सुनाने को जा रहा है शहद भरी आवाज में विनोद सहगल।

सूरत अंदाज में पेश थी ये गजल जिगर मुराद आबादी का कलाम और जगजीत सिंह की मौसिकी थी। अब हम आपको ले चलते हैं उस सुनहरी दौर में जिसमें आपकी मीठी यादें जुड़ी है। गीत सुनाने से पहले अर्ज है, फिर हुआ तमाशा गली में आज सुबह, वो थे मेरे सामने, मैं उसे वो मुझे देख रहे थे। फिर क्या हुआ? हाँ, वही जो अक्सर होता आया है, लोग हमें देखते रहे क्योंकि वो गली पार करके सामने थे।

का गीत पेश था मुखर्जी और चित्तलकर की आवाजों में पेश था ये दो गाना। सी रामचंद्र का सजाया गीत और गोपाल सिंह नेपाली का बोल था। दिल के कोने में दबी हुई यादें फिर ताजा तो हो गई होगे ना, ये दास्ताने गमे दिल कहाँ कहीं जाए, यहाँ तो खुल के कोई बात भी ना की जाए, ऐ गमे दिल क्या करूं।

सरदार मल्लिक का संगीत रचना गायिका थी आशा भोसले। ये सच है पहले प्यार ही बसा रहता है ख्यालों में। तुम मेरी बेबसी देखो मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता।

मन्ना डे से पेश था ये नगमा और ये फिल्म बहके कदम से लिया है उषा खन्ना की मौसिकी थी नगमात धर्मेश दत्त का। खो गया जाने कहाँ आरजुओं का जहाँ, ढलता हुआ सूरज भी अब कहने लगा है मुझसे, कल फिर से आऊंगा एक नई सुबह के संग, नई उम्मीदों के संग।

हो गया जाने कहाँ, रोंते खड़े हो जाते हैं ऐसे नगमे सुनकर। महान शायर राजेंद्र कृष्ण का गीत रचना, संगीत रचना मदन मोहन का, आवाज थी हेमंत कुमार की। अब लीजिए पेश है मोहम्मद रफी साहेब से अगला गीत।

Udella's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

सभी सुनने वालों को निशा फिल्मी दुनिया में इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। फिल्मी दुनिया में हम कई हफ्तों से महान गायक मुकेश चंद माथुर के बारे में बयां कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में शायद आप सुने होंगे कि मुकेश का अरमान था अदाकार बनने को, इसलिए वो बिना अपने वालदैन के इजाजत से बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे में वो अदाकार मोतीलाल के साथ रहते थे। मोतीलाल को मुकेश की आवाज पसंद था। वो चाहते थे कि मुकेश संगीत पर तवज्जो दे, इसलिए जब मोतीलाल ने फिल्म पहली नजर में काम कर रहे थे तो उन्होंने इस फिल्म के पेशकश और हिदायतकार से दरख्वास्त किया था मुकेश को इस फिल्म में गवाने को। फिल्म पहली नजर में संगीत दिया था अनिल विश्वास। मुकेश से मिलने के बाद संगीतकार अनिल विश्वास ने मुकेश से दिन तारीख तय कर चुके थे रिकॉर्डिंग के लिए। पिछले प्रोग्राम में आप शायद सुने होंगे कि रिकॉर्डिंग का दिन मुकेश ने अनिल विश्वास को घंटों इंतजार कराया था। उसने मुकेश को स्टूडियो में ना देखकर बहुत नाराज हुआ था, फिर अपने नौकर को हिदायत दी मुकेश को कहीं से भी ढूंढ कर लाने को। मुकेश जब नौकर को देखा तब उसे याद आया कि आज उनका रिकॉर्डिंग था और वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। कहानी दिलचस्प है, आगे सुनेंगे एक गीत के बाद।

राकेश की आवाज में आपने अभी ये गीत सुना। तो जैसे हमने इस गीत से पहले कहा, मुकेश ने जब नौकर को पहचाना तो अपने दोस्तों से घबराया हुए कहा कि आज उनका रिकॉर्डिंग था और साहेब अनिल विश्वास इंतजार कर रहे होंगे। फिर दौड़ते दौड़ते मुकेश ने स्टूडियो पहुंचा। स्टूडियो में सन्नाटा छाई हुई थी। वो एक अपराधी की तरह नजरें झुकाए अनिल विश्वास के सामने खड़े थे और कहा, साहेब मुझे माफ कर दो। अनिल विश्वास ने मुकेश को इतना जल्द माफ नहीं किया। मुकेश को खूब भला बुरा कहा, उनके गलतियां को एहसास दिलाए कि वो गैर जिम्मेदारी के काम किया था। मुकेश रोने लगे, रोते रोते कई बार माफी मांगा। फिर अनिल विश्वास ने उनसे कहा, तुम जाकर अपना हाथ मुंह धोकर मेरे पास स्टूडियो में वापस आना। बिना एक शब्द कहते हुए चुपचाप मुकेश स्टूडियो में आए, अनिल विश्वास के सामने खड़े हो गए और रिकॉर्डिंग के लिए एकदम तैयार हो गया था। मुकेश ने अपने दिल के सारे दर्द एक साथ समेट कर इस गीत में डाल दिया और इस गीत का नतीजा आप खुद सुनिए।

दिल जलता है तो जलने दो, कितना दर्द कितना कशिश था मुकेश की आवाज में। लगता था जैसे सारी दुनिया का दर्द उसमें समाई हुई थी। इस गीत को जब आप गौर से सुनेंगे तो इसमें कुंदनलाल सहगल की गायकी महसूस करेंगे। मुकेश का ये गीत सुनकर सहगल अपने आप पर फखर महसूस किया। उसे यकीन होने लगा कि उनकी आवाज को नकल करने वाले और लोग हैं। लेकिन जब वो मुकेश से खुद मिलकर बात की तब सहगल को एहसास हुआ कि मुकेश उससे बेहतर फनकार था। फिर वो अपना हारमोनियम अपना अमानत उसे तोहफा में दिया। मुकेश की संगीत सफर कैसे शुरू हुई हमने बयां किया। उससे गाने में कोई शौक नहीं था। वो अदाकार बनना चाहते थे लेकिन उनकी तकदीर उसे क्या से क्या बना दिया। वो हम सबकी एक रूहानी सौगात है। आज भी हम उनके नगमों से लुत्फ उठाते हैं।

0: काल के कब तक जी बहलाएगा ए प्यासे दिल बेजुबान।
1: अब हम मुकेश की निजी जिंदगी की पर्दे के पीछे जरा सा झांक कर देखेंगे ये कैसे थी, ये तो आप जरूर जानना चाहोगे। बात है नेहतीन द्रियफेयर तक की। मुकेश की अभी कोई खास पहचान नहीं थी। बॉम्बे में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ऐसे मुश्किल की घड़ी में इस हालात में वो अपने परिवार के पास दिल्ली नहीं जाना चाहते थे। वो कुछ बनकर जान दिखाना चाहते थे। हिम्मत उनका बुलंद था, वो हिम्मत कभी नहीं हारा। बस एक वक्त की रोटी वो कमा लेते थे। तो इसी दौरान मुकेश की मुलाकात मन्नू भाई त्रिवेदी से हुई। मुलाकातों का सिलसिला दोस्ती में बदल गई और इसी तरह एक दूसरे के घर में आना जाना की राह भी बन गई। मन्नू भाई त्रिवेदी की एक खूबसूरत बहन थी बच्ची बेन। पहली नजर में आपस को देखते ही प्यार की कौंपले फूटी। इसका एहसास किसी को नहीं हुआ, पर प्यार ऐसा जज्बा है जो अंदर ही अंदर सुलगता है, जिसका एहसास उस वक्त होता है जब जुदाई की घड़ी रूबरू होती है। क्योंकि वो दिन जब मुकेश की मुलाकात बच्ची बहन से नहीं हो सकती थी तो उसे लगता था कि कहीं वो कुछ खो गया है, और ये एहसास बच्ची बहन को भी महसूस होती थी। पर हाँ, किसी ने खूब कहा, फूल की खुशबू और इश्क की रंगत कभी छिपाए से नहीं छिपती। कब तलक? आखिर एक दिन मन्नू भाई त्रिवेदी और घर वालों को इस खामोशी मोहब्बत पर यकीन हो गया, एहसास हो गया था कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मन्नू भाई को मुकेश की ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। मुकेश से जब घर वालों इसके बारे में जिक्र किए तो वो घबरा गए और अपना जुबान से कुछ कहा नहीं। मन्नू भाई ने मुकेश पर इतना नाराज हुआ, उसे खबरदार किया और कहा, आज से तुम्हारे लिए इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। पर इश्क पर किसी का जोर चला है जो इसे रोक सके? मुकेश को अपनी बच्ची बहन से जुदा होकर मजनू की हालत जैसे हो गया था। बेचैन था, अपने प्यार को दीदार के लिए घंटों तक बच्ची बहन के घर के सामने खड़े रहते थे, और प्यार का दर्द उसे कैसे महसूस हो रहा था इस गीत में मुकेश ने गाकर हमें सुनाया।

जी हाँ, इस गीत के एक एक शब्द मुकेश की प्रेम कहानी से जुड़ी हुई थी। ये सच है, हकीकत है। इश्क पर जोर नहीं, फिर भी कितने हैं जो प्यार का दुश्मन हो जाते हैं। बच्ची बहन मुकेश की दिल की चैन था, जब तक वो अपने प्यार का एक झलक ना देख लेता, दर्द से वो हिलता नहीं था। ठंड और बारिश की परवाह वो नहीं करते थे। मुकेश और मन्नू भाई की दोस्ती में दरार पड़ गया था। घर की दरवाजा मुकेश के लिए बंद था और घर वालों ने बच्ची बहन पर पहरेदारी कर रहे थे। उसे सख्त मना था बाहर जाने को। नौबत यहां तक आई थी कि मुकेश को अब ना अदाकारी में और ना संगीत में दिल लगता था। बच्ची बहन की घर की आसपास घूमते रहते थे कि शायद बच्ची एक बार घर से बाहर कदम रख दे, पर यह नहीं हुआ। और कब तक मुकेश मजनू की तरह घर की आसपास फिरते रहे। पर कैसे दोनों में पहली मुलाकात हुई, मुकेश ने एक तरकीब सोचा। उसे एहसास था कि बच्ची बहन हर सोमवार को अपने पास की शिव मंदिर में पूजा करने जाती है, लेकिन अब वो अकेले नहीं जाती थी, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई साथ रहते थे। मुकेश उसे सिर्फ दूर से देखकर अपने आप को तसल्ली कर लेते थे। जब घर वालों को यकीन हो गए कि दोनों आपस को भूल गए, तो बच्ची बहन के साथ मंदिर जाना छोड़ दिए। मुकेश ने इसका फायदा उठाए अपने प्यार से मिलने को। इसी तरह दोनों हर सोमवार को छुपकर मिलते रहते थे। लेकिन दुनिया वालों को दो मोहब्बत भरे प्रेमियों को पल भर की मुलाकात भी बर्दाश्त नहीं हुई, और इन दोनों का छुपकर मिलने की खबर घर तक पहुंच गई। फिर दोबारा बच्ची बहन का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। मुकेश ने सोचा, मेरा प्यार को कब तक कैद में रखेंगे। ये दूरियां कुछ हद तक बर्दाश्त किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। उनका हौसला बुलंद था। बच्ची बहन पर अब सख्त पहरेदारी थी, यहां तक कि रात को दरवाजे के सामने बैठकर रखवाले करते थे। बच्ची बहन घर की चार दीवारी में कैदी की तरह रात और दिन रोते रहते थे।

से भुलाना। इस गीत से हम महसूस कर सकते हैं कि मुकेश पर क्या बीते होंगे अपनी मोहब्बत से जुड़ा होते हुए। दो प्यार करने वालों को ये जालिम दुनिया वाले कब तक जुदा करते। इतना कोशिश करने की बावजूद इन दोनों प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर पाए। एक बात तो सच है, दो प्यार करने वालों की जुदाई में मोहब्बत और मजबूत होती है मिलने के बाद। मुकेश को एक ही सवाल बार बार उठता था कि कैसे बच्ची बहन से मिल सके, और मिलने के बाद उसे फौरन मंदिर में शादी करना चाहते थे। बॉम्बे में अपना तो कोई नहीं था, एक दोस्त था मन्नू भाई त्रिवेदी, वो भी अब उनका दुश्मन था। आखिर वो अदाकार मोतीलाल को अपना राजदार बनाया। मोतीलाल से वो अपना दिल का हाल बतलाए। मोतीलाल को मुकेश की इन बातें सुनकर बड़ा सदमा पहुंचा और कहा कि इतना सब कुछ तुमने अकेले सहा और अब मेरे पास आए हो। मुश्किल की घड़ी में आप ही तो है बॉम्बे में जिसे हम याद करते हैं, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुकेश ने कहा कि उसे एहसास नहीं था कि दो प्यार करने वालों के बीच इतना कांटे बिछाए जाते हैं। मोतीलाल ने मुकेश की बातों पर एक तरकीब सोचा, जैसे फिल्मों में होता है बिल्कुल उसी तरह। उसने कहा, लड़की पाने के लिए तुमको मेरा कहना मानना पड़ेगा, तुम मौके का इंतजार करना, जैसे मौका मिले बच्ची बहन को खबर पहुंचा देना कि वो सोमवार को शिव मंदिर जरूर आ जाए। ये खबर तो बच्ची बहन के पास पहुंच गई किसी ना किसी तरीके से, लेकिन घर से निकलना नामुमकिन था। उनके हर कदम पर निगाहें थे। करे तो क्या करे, सोमवार को उसे अपने महबूब से मिलना था, मिलकर हमेशा के लिए एक होना था। बच्चे बहन जिद करने लगे, अपने माँ बाप से कहा कि वो सोमवार को सारा दिन व्रत रखेंगी और मंदिर में पूजा करने के बाद अपना व्रत तोड़ेंगे, लेकिन उनके वालिद ये बात से सहमत नहीं था और बच्ची को शिव मंदिर जाने को मना कर दिया। क्या बच्ची बहन सोमवार को शिव मंदिर जा पाएंगे, अपने महबूब से मुलाकात कर पाएंगे? कहानी दिलचस्प है, आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम तक।

0: अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान गायक मुकेश जी के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। जो बर्दाश्त करने का फन जानता है, वो शख्स जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।
1: पलकों पे ना तो

मतलब का गाना पेश था मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत रचना, गीत रचना वर्मा मल्लिक का। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं।

फिल्म पाकिज़ा का नगमा पेश था मौसिकार गुलाम मोहम्मद की मौसिकी और शायर कैफी अजमी का कलाम था। क्यों ना आज बदले रस्मी जहां मोहब्बत को छोड़कर महबूब को आग लगा दी जाए, तो हाँ लगा चुनरी में दाग अब छुपाऊं कैसे।

चुनरी में दाग, फिल्म दिल ही तो है में से ये गीत लिया। स्वर थी मन्ना डे की, संगीत से सवारे थे रोशन और साहिर लुधियानवी का लिखा तर्ज था। इतनी कशिश तो निगाहे शौक में साकी, इधर इधर दिल में ख्याल आए, उधर उधर वो बेकरार हो जाए। ओ बेकरार दिल, हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार।

सदाबहार नगमा पेश था स्वर थी लता मंगेशकर की, संगीत से सवारे थे संगीतकार हेमंत कुमार और कैफी अजमी का लिखा तर्ज था। अगला गीत आइए सुने हेमंत कुमार की आवाज में।

का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। वो नजर यूं उठी यूं झुकी यूं रुकी, हम तो बस थामे जिगर देखते रहे। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है, क्या कह रही है, कि दीवाना हो गया।

शायराना अंदाज में पेश था ये नगमा नगमात ऐश कंवल का मौसिकी लाला सर सत्तार का। अगला नगमा आइए सुने, स्वर है आशा भोसले की।

जी हाँ, कितना हसी है ये जहाँ, खूबसूरत अंदाज में ये गीत पेश था। ओपी नैयर संगीत से सवारे थे बोल हसरत जयपुरी का। तेरे ख्याल में कुछ ऐसे गुम रहा बरसो, मैं अपने आप से भी मिल नहीं सका बरसो। तुम्हारे हाथ के दस्तक की आस में मोहसिन, मैं अपने घर से कहीं भी नहीं गए बरसों।

तो ख्याल आए। संगीत का रवि का संगीत रचना, गीत रचना साही लुधियानवी का, आवाज थी महेंद्र कपूर की। सुबह की किरण, सुबह की किरण आंखें मल मल कर देख रही है। नई सुबह, नया दिन, एक शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है।

सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कमाल का नगमा पेश था किशोर कुमार की आवाज में, नगमात इंदिवार का और मौसिकी ओपी नैयर की। अगला नगमा सुनाने को जा रही है मीठी स्वर में लता मंगेशकर।

मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। खूबसूरत अंदाज में पेश था ये गीत लता मंगेशकर की स्वर में। मंजिल की इंतहा तो कोई बताए ऐ फैज, चला जा रहा हूँ चला जा रहा हूँ और हसरते बढ़ती जा रही है। ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है।

अमर गीत पेश था, आवाजें थी सुबीर सैन और लता मंगेशकर की। वो मेरे साथ बहुत दूर तक, वो मेरे साथ बहुत दूर तक सफर में रहा कि उसकी याद का साया, कि उसकी याद का साया मेरे नजर में रहा।

जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी में पेश था ये नगमा और नगमात राजा मेहदी अली खान का। अब आइए सुने मोहम्मद रफी साहब से ये नगमा।

जीते ही लेंगे बाजी हम तुम, प्यार का बंधन जन्म का बंधन टूटे ना, क्योंकि क्योंकि मुझ में एक ही तो खूबी है तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करना। खयाम की मौसिकी में पेश था ये नगमा, अब आइए सुने ए आर रहमान की मौसिकी में ये दो गाना।

दिल छू लेने वाले नगमा पेश था, आवाजें थी हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की। होती नहीं मोहब्बत चेहरे से, होती नहीं मोहब्बत चेहरे से, मोहब्बत मोहब्बत तो दिल से होती है, तो चेहरा खुद बखुद अच्छा लगता है, कदर जिनकी दिल में होती है।

खूबसूरत अंदाज में आपने अभी अनुराधा पौडवाल से ये नगमा सुना। कलाम था सिकंदर भारती का, मौसिकी बप्पी लहरी की। आज की रात भी मुमकिन है ना सो सकूं, इसलिए क्योंकि उनकी याद फिर आई है नींदों को उड़ाने वाली।

की सजना है मुझे सजना के लिए। आज है 13 जुलाई, het is mooi weer en de komende dagen wordt het alleen maar warm.

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम हम कॉफी चाय अब धीरे धीरे समाप्त करने को जा रहे हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले हम ये भजन आपको सुनाने को जा रहे हैं और इसी भजन के साथ हम ये प्रोग्राम को आज अब समाप्त करने वाले हैं। चंद्रू आत्मा के आवाज़ में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा गाना सुनने में बहुत सुकून मिलेगा। मोई से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि चंद्रू आत्मा कौन सी गाव है। ये गाव हैगा कि हाथ की रेखा कर्म से बदले, जिस तोर हाथ में जो रेखा लिखल हैगा तोर कर्म से भी बदल सकेगा। मोई से रहिए। यहाँ तक आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम कॉफी चाय में दक्षो पेश किया गया है। बदाम फरोत लाइसर एंड मॉर्गन इज वेर न्यू आउटसेंडिंग। Ik wens je een mooie start van de nieuwe week. Zorg goed voor jezelf. Blijf goed drinken met deze warme dagen. En vergeet niet dat een vriendelijke woord iemands hele dag kan veranderen. Ha? Pyar se baat kariye. Aur mooi se rahiye.

0: ये क्या?
1: तोहफा।
0: तोहफा? तोहफा तो मुझे देना चाहिए था।
1: तुमसे तोहफा मैंने ले लिया है।
0: जी मुझसे?
1: तुमसे, तुम्हारी टीचर।
0: जोकर, इसका क्या करूं?
1: इसे अपने पास रखो, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्ही को लौटा रहा हूं।
0: जी मेरे लिए?
1: देखो एक दिन राजू बड़ा होगा, लेकिन जोकर राजू ऐसा ही रहेगा, भोला मासूम। इसे जिसके हवाले करना सोच समझ कर करना। दुनिया में जोकर के साथ जो करता है मजाक करता है।